जगह मर मीना तुम्हारे पोकना मर मीना तुम्हारे पोकना भैया जी सो कर